धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हमसे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा।